तुम मात पिता हम, तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने। ऊचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरे, तुम ते हो सो तुमरी गात मेत नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी क्यों अंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौती जी सहाय वार, श्री भौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम अगौती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जह डठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया करना उन दयावे ताए, सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ, सब थाई होई सहाय दसों पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहे। पंजा प्यारिया चौं सब जादियां, चालियां मुगतियां, अठियां जपियां तपियां, शहीद सिंह सिंघणियां जिन्हां नाम जपया, वंड छकिया, देग चलाई, तेग वाई, देग केंद लटकीता, तिन्हां गुरमों प्यारियां सचारियां की कमाई का ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहे। जिन्हां सिंह सिंघणियां धर्म इसी दिते, बंद बंद कटाए, चरखड़िया ते चढ़े आ रहे नाल तन चरवाए, उबलदिया देगा उबाले के खोपरिया लहोईया, गुरद्वारिया की सेवा संभाले, कुरबानिया कीतिया, तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया, असहे ते कहिगा सहार दे शहीदो सिकिद केसां सवासां संग नभाई तरमनी हारिया। तिना समूह शहीद सिंह सिंघणिया की कमाई का ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहे। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे जी का ध्यान दर खालसे। सब बोलो जी वाहे। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियाय दे, ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले खालसे। सब बोलो जी वाहे। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के इनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसे जी के बोल बाले खालसे। सब बोलो जी वाहे। सिखा दा मन नीवा, मात उची मादे राखे, आप अकाल पुरखंत्र जामे, गुरु गरीब नवास जी पातशाह, पांदे सदा सहाय दतार पिता जी। श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। नमाण्या दे माण, नताण्या दे ताण, नियोटियां दी औण, आसरन दे आसरे, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी, आप दे अपार बख्श रहमत कृपा दा सदका आप दे हजूर शामा दे दीवान सजे सजे दीवाना विच आप दी लाही बणदे, हर जस कीर्तन शब्द की कथा ताड़ी वारा त्याग की सेवा हुई, सेवा करदे हुई फुलां बख्श लैणिया, पढ़ी सुनी बाणी का भाव सरबत संगतां दे हिरदिया विच वसाउणा, सरबत संगतां दी हाजरी, तेल फुल पिटावां रस्तां आदिक अपने दर ते प्रवान करनिया, सिर ते मेहर भरिया थकड़ा तंदुरुस्तियां बख्शणियां, परिवारां विच सुख वरताउणा, सरबत संगतां दे कारोबार दी बरकतां बख्शिश करनियां, सेवादारां नूं चढ़दी कला बणी पंद दे सिर ते मेहर भरिया थकड़ा दरों करों वसाए लखन के पढ़े दाता जी। नगर वालों श्री अखंड पाठ कीर्तन ते गुरु के लंगर की सेवा हो रही है, मेहर करनी दाता जी, नगर की सेवा थाए पौनी, परिवारों में सुख वरता, नगर न चढ़दी कला बख्शिश करनी है, परिवारों में सुख वरता, बच्चों सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना, किरत कमाई जी बरता, प्रेम प्यार इतफाक दाता ते शुभ भावना पूरिया करनिया, अंग संघ सहायोग के वर्तना दिवान की समाप्ति है, मेहर करो, पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी, से गुरम प्यारे मेला जिन्ह मिलया तेरा नाम चेतावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰੋ ਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰੋ ਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

समय तरु ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वेरा सात कथा ते जानी जा को आए सोई बेहा जो हर गुरते मन बसेरा निज कर मैल पाओ सो सहजे बोर न हो गोबेरा अंतर जामी पुरख बदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोकु कर संतन की तू।

निराशय कित फल फिके फुल बक बके कम ना वै पत मिटत नीवी नानका गुण चंगे तत् सब को निवै आपको पर को निवै न कोई।

0: पहला गौ ब्राह्मण को करलावे गोबर तर न जाए, धोती टिका तह जप वाले तान मलेशा खाए, आंतर पूजा पढ़िक ते बांसन जम तुरका पाई, छूडी ले पखंडा नाम लिया जाए तिरंगा। महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री विगायन तिन गलता, तिन कर ब्राह्मण पूरे नादु ना ब्यावे उई साधु, कूड़ी राज कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा प्रभुर, मत्था टिका तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे परवान, मलेश तानले पूज है पुराण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कटी कार, ऊपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै एह अन्न असाडा फिटै, तन फिटै फिड़ करेन, मन झूठै चुली परेन, कौ नानक सच ते आईए, सुच होवे तां

जाए छुट्टिया किसे लगा दूख। अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरता हुआ पापवित पापी सो तन गड्डिया थुका पाइया तित जित मुख नाम ना उचरै बिना वैरस खाए नानके वे जानी है तित।

पाए। हुर मन तिसनु अगली वजो पितुना खाए खसम करे बराबरी फिर गया चंद्र पाए। बजो को अगला महम पाना खाए जिस दिता खावना दिस गई सबास नान हुक्म चले।

प्रतीत ही ये आई जिन जान कह तिन कौ पदवी उच पई। ताज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई। अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकेया दिव्य दृष्ट कारण करणं। सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरणं। सजन सचा पातशाह सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है

दास को दातु ठाकुर सो क्यों मनो बिसारे अरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे अरे।

हीरा लाल अमोल जन्म है, कौड़ी बदले हारियो रे रहाओ। तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहे विचारियो रे, उन्मत मान हिरियो मन माही, गुर का शब्द न धारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लैत बिकारियो रे,

भले मुला पंजवा रोग गया, प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। रज रज भोजन खाओ मेरे पाई, अमृत नाम रिद माह त्याई, नानक गुरपुरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिला बल मुला पंजवा सतगुर कर दीने अस्त्र कर बार रहाओ, जो जो निंद करै इस ग्रहण की, तिस आग्या ही मारे करतार, नानक दास ताकी सरनाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिला बल मुला पंजवा

काहे फिरो अपागे, देख कुसुम्बा रंगला काहे फूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कहताई, माटी से माटी रली नागा उठ जाई। जाके किए शर्म करे ते बैर विरोधी, अंतकाल भज जाहे गे काहे जल क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छूटे सतगुरु की सरणा। बिलावल मिला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बगीता, अंदली त्रिपवन सूजिया गुर पेट पुनीता। मेहमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे जीता। रहो ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेल दिखीता, शर्म करते दम आड कौ ते गणित नीता। कमन वडाई कह सको बेअंता गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। बिलावल मल्ला पंजवा अहम बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध, लपट कपट गृह बेदया मिथ्या बिख्यात। ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुरप्रसाद, राज मिलक धन जो बना नामे बिन बाद। रहाओ रूप धूप सुगंधता कापर पुगाद, मिलत संग पा पापिष्ट तन होए दुर्गाद। फिरत फिरत मानक पया फिर भंगन देहाद, ए अवसर ते चुकिया बहु जोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताके पूर्ण नाद। बिलावल मिला पंजवा चरण पए संत बोहिथा, तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान। मैं गुर दसे पेत, हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत। उठत बैठत सोवते हर हर हर चेत, रहाओ पंच चोर आग्या पगै जब साध संगते। पूंजी साबत घणो लाभ गृह सोभा सेत, ने चलिया सन मिट्टी चिंत नाही डोलेट। परम पुलाहा परम भुलावा मिट गया, प्रभ पेखत नेत गुण गंभीर गुरु नायका। गुण कहिए केत नानक पाया साध संग हर हर अमृत। बिलावल मुला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो प्रथारी, मिल संत मिल संग सब परम मिटे गत पई हमारी। जादन पिटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर फिरहो वारी। रहो एत छडाई मोहे ते कनी दृतारी, सगल रेन एह मन पया बिनसी अपतारी। निंद चिंद पर दुख ना एक खिन मह जारी, दया मया अर निकट पेख नाही दुरारी। तन मन शीतल भये अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण धन नानक दरसारी। बिलावल मल्ला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारो बाल, मस्तक अपना भेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बासुर मन अनद होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उतारण साध प्रभ तिन लागो पाल, मुको दीजै दान प्रभ संतन पग राल। उक्त सियानप कश नहीं नाही कश काल, भ्रम पै राखो मोह ते काटो जम जाल। बिनो करो करुणापते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरी साध संग नानक सुख काल। बिलावल मिला पंजवा कीता लोड़ै सो करै तुझबिन कछ नाही, प्रताप तुम्हारा देख कै जम दूत छड जाहि। तुमरी कृपा ते छुटी है बिनसै अमेव, सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन कूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मन सापूर। जित जित लावो तित तित लगै स्यानप सब जाली, जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वडभागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल मल्ला पंजवा साध संगत कै बास बै कलमल सब नसना, प्रभ से ती रंग रातिया ताते गर्भना ग्रसना। नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना। रहो हर रस चाखत त्रापया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उलट कमल बिगसना। शीतल सांत संतोख होई सब बूझी तिसना, दया दिसतावत मित गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पये भ्रम पसना,
ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪੇਖ ਸਾਧ ਦਸਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾਂ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕਹਿ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਜਾਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤੇ ਸਿਰਣੀ ਲਾਗ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤ ਤਿੰਨ ਛੋਡੋ ਤਿਆਗ ਰਹਾਓ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁਖਾ ਸੋ ਸਰਵ ਨਿਦਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਖਤ ਛਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖਿਉ ਸਮਾਨ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੁਗਰਾ ਓੜ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਓ ਰਿਸਮੀ ਪਹਿਰਤ ਪਤ ਖੋਈ ਸਾਕਤ ਸਿਉਮਕ ਜੋਰੀ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੈ ਹਰ ਜਨ ਕਿਸੇ ਵਾਜੋ ਕਰੇ ਉਤੇ ਛੁੱਟੈ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਸਾਧਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਬਿਲਾਵਲ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਵਨੀ ਸੁਨੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਸ ਗਾਵੋ

ठाकुर बिरधाया, मत पुलो मानुक जन माया परमाया, नानक तिस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मल्ला पंजवा, माटी ते जिन साजिया कर दुर्बल देह, अनक सिद्र मन मह टके निर्मल दृष्टि, क्यों बिसरया प्रभ मने ते जिसके गुण एह, प्रभ ताजर ते जे आन स्यो सुर लिये खी, रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे, छोड़ परपंच प्रभ स्यो रचो ताज कूड़े नेह, जिन अनक एक बहुरंग किए है होसी एह, कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरु ते मत ले, उचे ते उचा वड्डा सब संग बसनेह, दास दास को दासरा नानक कर ले। बिलावल मिला पंजवा, एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माए राव, आप रखे आप देवसी आपे प्रत पारे, दीन दयाल कृपा निध सास सास मारे, करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुरपुरे उपदेसिया सुख समर जाई, चिंत अदेसा गणत तज जन हुक्म पछाता, नैबन सहना छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल मल्ला पंजवा, महा तपत ते भई सांत परसत ना परसत पाप नाठे, अंधकूप मह गलत थे काडे दे हाथे, ओए हमारे साजना हम उनकी रेन, जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ, पूरा पुरबला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाई, पै बिन से त्यो लोक के पाए सुख थान, दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम, नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार, करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार। बिलावल मल्ला पंजवा, सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना, करणे हार न बुझे आप गन्ने बेगाना, दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चित आए, संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ, उचे ते उचा उचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै, कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै, पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया, करण कारण समरथ प्रभ ते शरणाई, हर दिन सरैण नानक जपै सद सद बल जाई। बिलावल मल्ला पंजवा, जल ढोवो एह सीस कर, कर पग पखलावो बार जाओ, लख बेरिया दरस पेख जीवाओ रहाओ, करो मनोरथ मन्ने माहे अपने प्रभ ते पाओ, देव सुहनी साध कै बीजन टोलाओ रहाओ, अमृत गुण संत बोलते सुन मन्ने पिलावो, वारस मह सा तृप्त होए बिखै जलन बजावो, जब भगत करै संत मंडली तिन मिल हर गावो।

हर शरण समाव बिलावल मल्ला पंजवा। एहो सागर सोई तरै जो हर गुण गाई, साध संगत कै संग वसै वटभागी पाई। सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी। रहाओ अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचया गुर पे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुखा थान पाया, काटी सिलक प्रमो की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाई संग संतन साथ। बिलावल मल्ला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरु पूरा कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापे। हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई, किल उतरै सुध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई, महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल मल्ला पंजवा। पैते उपजै भगत प्रभ अंतर होए सांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रात। गुरपुरा जिस भेटिया ताकै सुख प्रवेश, मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश। रहाओ सिमरत सिमरत सिमरिए।

जाको कृपा करो प्रभु ताको लाभ सेव निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो न विसरै प्रभु परमानंद बिलावल मिला पंजवा।

थान थन धरा भरे नानक के स्वामी बिलावल मुल्ला पंजमा ताती भावना लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जन बणत बनाई राम नाम खत दिया काल विलाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सब ब्याज मिटाई का उन्होंने कृपा पई प्रापई सियाई बिलावल मुल्ला पंजमा अपने बालक आप रखिन पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांत सहज आनंद पई पूरन पई सेव रहाओ भगत दिना की बेनती सुनी प्रभ आप रोग मिटाए जीवाले उन जाका वड प्रताप दुख हमारे बख्शियन अपनी कलतारी मन वांछित फल तितियन नानक बलिहारी राग बिलावल मुल्ला पंजमा चौपदे दुपदे घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन सवनी ए न सुनाए सकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो कृताए अभय दान पाओ बरगदाते मिल संगत हरगुण गाए रसना अगे अगे गुण राति नैन दस रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सब हूं तले तले सब ऊपर एव दिस दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई होमो कहो सतगुरु मंत्र डराए अतुल अतुल अतुल नहीं तुलिए भगत वशल कृपाए जो जो शरण परयो नानक अबै दान सुख पाए बिलावल मुल्ला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है नमस्कार रंडौत बंदना अनक बार जाओ बार रहो उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की वृथा तुझ ही आग्ञा सारे तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम है मेरे परिवार है जो तुम करो सोई पल हमरै पीख नानक सुख चरणारे बिलावल मुल्ला पंजवा सुनियत प्रभ तौ सकल उदाहरण मोह मगन पतित संग प्राणी ऐसे मने बिसारण रहाओ संच बिखिया ले ग्रह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बिदारण इन ते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारण नानक की बिनती प्रभ है साध संग रंग कारण बिलावल मल्ला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिनस अर रात रहाओ कर कृपा अपने प्रभ किन्ने नाम अपने की किन्नी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात तृप्त अगाए पेख दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मुल्ला पंजवा राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब रोग संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना अलाप कोट जन्म की तिसना निवरी राम रसायन आत्म तराप चरण गए शरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम पै बिनसे को नानक ठाकुर प्रताप बिलावल मुल्ला पंजवा ताप लाहया गुर सृजनहार सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार रहाओ कर मस्तक धार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम।

जाल नहीं कछु जंजारा, अहमद नहीं पोहरा, ऊचन ऊंचा बीच न खींचा, हौ तेरा तू मोरा एक अंकार एक पसारा एक है प्रपारा, एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण अदारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता हसदा बेअंता कहो नानक, उच ऊंचा बिलावल मिला पंजवा, बिन हर कामना आवत ही, जा स्यों राच माच तुम लागे,

प्रभु तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गहे प्रभु गुरु नानक गो बूझ बजाए बिलावल मल्ला। पंजवा अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मल लाइए, कित विधि है कि संजम पाइय कहो सो जन कित जुगत ध्याई रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिस की लई लाई फन जाइए, नानक शरण शरण सुख सागर मोहे टेक इधर तेरो एक नाइय। बिलावल मुला पंजवा संत शरण संत टहल करी, धंध बंद अर सकल संजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ।

कोई बेचारा प्रभ मेरी का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास जाते उपर को नाही। बिलावल मल्ला पंजवां, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा काश दुख न व्यापै, आग्या दरग्या पूर्ण काम रहाओ। आप त्याग परिय नित सरणी, गुरते पाइया एहो निदान, जन्म मरण की कटिए फांसी, साची दरग्या का निशान। जो तुम करो सोई पल मानो, मन ते छुट्टै सगल गुमान। कहो नानक ता की सरणाई, जाका किया सगल जहान। बिलावल मल्ला पंजवां, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार, नित तिस रसना का मोल किश नाही। रहाओ कुल समूह उदरे खिन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर सिमर प्रभ।

अवलम्बन लप निमाम। तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही वसै साध के संगा, रहो खिन में थाप निवाजे ठाकुर नीच गीत, ते करे रजंगा। कब हूं ना बिसरे ही ये मोरे, ते नानक दास यही दान मंगा। बिलावल मुला पंजवा अचुत पूजा, जोग गोपाल मन तन अर्प रखो, हर आग्ञा सर्ब जिया का है प्रतपाल, रहो शरण समरथ।

अनहिरा बिलावल मल्ला पंजवा तुम समर्था कारण करने टाकन टाक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराधी शरण चरण रहाओ जो जो कीनो सो तुम जाने हो पेख्यो ठौर नाही काश ठीठ मुस्करण बड प्रताप सुनिय प्रभु तुमरु कोट अगा तेरो नाम हरण हमरो स्वाहो सदा सद पूलन तुमरो बिरद पतित उदरण करणा मैं कृपाल कृपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बिलावल मल्ला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संत है चरण हमारो माथा नैन दस तन तूर परो रहाओ गुर को शब्द मेरे ही रह बस है हर नामा मन संगत रहो तस्कर पंच निवारो ठाकुर सगलो परमा होम जरो जो तुम करो सोई पल माने पावन दुबदा दूर टरो नानक प्रभु तुम ही दाते संतंग ले मोहे उदरो बिलावल मल्ला पंजवा ऐसी दिखिया जन स्यो मंगा तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहा हो जन की टहल संपाखन।

सब होए खया, गुण अवगुण प्रभ कछ न बिचारियो, कर कृपा अपना कर लिया, अतल बढ़ाई अचत अचुत बिनासी, नानक उचरै हार की जया। मिलावल मिला पंजवा बिन भै भगती, तरण कैसो करो अनुग्रह, पतत उदाहरण राग स्वामी आप परोसो रहाओ। सिमरन नाही आवत फिरत मद मावत, बिखिया राता स्वान जैसे, औद बिहावत अधिक मुहावत, पाप कमावत बूढ़े ऐसे। सरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत, रवण जैसे केसव कलेस नास, आग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे। बिला राग बिलावल मिला पंजवा, दुप दे घर नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपै मेल ले जब ते सरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए रहाओ। तज अभिमान अरचिंत बिरानी, साधे सरण परे जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तन ते रोग गए महामुग्ध अजान अज्ञानी, राखे तार गए। कहो नानक गुरपुरा।

ओंकार सतगुर प्रसाद। दुख हरता हर नाम पछानो, अजा मलगन का जैसे मृत मुक्त पए जी दानो रहाओ। गज की त्रास मटीशन हूं मैं, जाबी राम बखानो। नारद कहत सुनत ध्रुव बारक, भजन माहे लपटानो। अचल अमर निरपै पद पायो, जगत जाहे हैरानो। नानक कहत भगत रशक, हर निकट ताहे तुम मानो। बिलावल मल्ला नौवा, हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा न चुके। गुरु एहो बेद बतावे रहाओ, कहा पयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं गावे। जोग जग निफल ते मानो, जो प्रभु जस बिसरावे।

रहो। तीर्थ करे व्रत फुन रखे ने मनुआ बस जाको ने फल कर्म ताहे तुम मानो साज कहत मैं याहो। जैसे पाहन जल माहे राख्यो भेदे नाहे तेह पानी तैसे ही तुम ताहे पछानो भगत हीन जो प्राणी। कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर यह भेद बतावैन कहो नानक सोई नर गुरुआ। जो प्रभ के गुण गावे बिलावल। अष्टपदियां महला पहला कर दसवां एको ओंकार सतगुर प्रसाद।

आओ। ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई। कथ कहने ते रह न कोई, बिन रस राते मुक्त न होई। ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई।

अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे। हर जीव सेवी अंतर जामी, कटकड़े अंतर जिसकी जोत समानी। तिस नाल क्या चले, पै नामी साचा नाम साचे शब्द जाने। आपे आप मिले चुके माने, गुरमुख नाम सदा सदा वखाने। सतगुरु सेवी है दूजी दुरमत जाई, अवगुण काट पापा मत खाई।

अलकलकैया नानक दीन दयाल पय है भगत पाए हर नाम समैया बिलावल मल्ला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्यावो हर चंदन वास सुगंध गंदिया मिल सतसंगत परम पंथ पाया मैहर डिपलास संग हर बहिया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया शरण परे सही जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहाओ पार अठारह मैं चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े उब सुख सूक हुए मन अभिमान विछड़ दूर गईया हर गत मित करता पे जाने सब विद हर हर आप बनैया जिस सतगुरु भेटे सो कंचन होवै सो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया रतन पदार्थ गुरमत पावै सागर भगत भंडार खलैया गुरचरणी एक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त ना पैया धर्म परम बैराग नित नित हर त्याए मैं हर गुण कहते भाव नहीं कहिया।

शब्द गवैया निज कर तार चुए अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लिया। मन हठ कर्म करै अभिमानी जो बालक बालू कर उसरिया आवे लहर समुद्र सागर की खिन मैं भिन्न भिन्न टह पैया।

सत्संग मिल रही है, कृपा करो मधुसूदन माधो, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया। रहाउ तजै गिरसत पया बनवासी, एक खिन मनु अटके ना अटकैया, ताव ताए तदे घर आवे हर हर साधु शरण पवैया। तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया, आसा आस करै नहीं बुझै गुर कै शब्द रास सुख लैया।

कामन कर कर प्रभ लहिया भगत विशल हुआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाशे पैया। खिमा सिगार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगै जियो घट घट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विछाई प्रभ छोड़ न सकै बहुड़ मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किस की जय सब बाद बिगार फोकट फोकटैया। की ओ सिगार मिलन कै ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करै तेरे वस पैया। दया दीन करो रख ले वो नानक हर गुण शरण समैया। बिलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिनकन सरदा मन बहुत उठैया। गुरदेखे सरदा मन पूरी ज्यो चातरक प्रेम प्रेम बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुरु दया करे ब्रह्म मेले मैं तिस आ गया सिर कट कट पैया।

बल घुम गईआ। अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुरु शरण पवैया। सेज एक एक प्रभु ठाकुर, महल ना पावे मनमुख परमैया।

गोबिंद पूर्णियास एक निमकरै न जाए वडभागी नानक पाए प्रभु तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मील जन स्यों हेत अल कमल भिन न पेत ज्यों चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यो तरण भरत प्राण ज्यो लोभी है धन दान ज्यो दूध जलै संजोग ज्यो महा खुआरित भोग ज्यो मात पुतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हिरतन संग मैं गलै का मैं बंद ज्यो ग्रस्त बिखई धंद ज्यो जुआर बिसन न जाए हर नानक एहो मन लाए कुरंक नादै नेहो चातरक चाहत मेहो जन जीवना सतसंग गोबिंद भजना संग असना बखाने नाम नानक दसन दान गुण गाए सुन दिख देन गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोयत नाहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखै मुरार हर नानक सरण द्वार बिलावल मल्ला पहला तिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया जो देख दिखावे तिसको बल जाई गुरु प्रसाद परम पद पाई क्या जप जापो बिन जगदी सह गुरु के शब्द महल कर दी सह रहा दूजे पाई लगे पछताने जमदर बादे आवण जाने क्या ले आवे क्या ले जाहे सिर जमकाल से चोटा खाही बिन सत बिन गुर शब्द ना छुटस कोई पाखंड कीने मुक्त न होए आपे सच किया कर जोड़ अंडर जोड़ जोड़ बिछोड़ तरत आकाश किए बैसन को थाओ रात दिनंत किए बो पाओ जिन किए

राम नानक प्रभ शरणागति जब अनंत तरंगे राम एक तिल प्रभु न बिसरै जिन सब किछ दीना राम अडभागी मिलावड़ा गुरमुख फिर चीना राम बाहां पकड़ तम काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार करामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम नानक उदरे जप हरे सबों का स्वामी राम रस भिन्न अड़े अपने राम संगे से लोन निके राम प्रापेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस रपाया बिखिया रस भी के राम नानक जल जलै समाया ज्योति ज्योत मी के राम बिलावल की बार मोहल्ला चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक मोहल्ला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गाव्या करनाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मनिया धुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उचरे हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चिराग जान नानक जीवै देखार एक निमख घड़ी मुख लाग महला दीजा बिलावल तब ही कीजिए जा मुख होवै राम राग नाद शब्द सोहने जा लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेविय तां दरगह पाइय मान नान गुरमुख ब्रह्म विचारिय चूकै मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभ आप गम है सब तो दो पाया तू आपे आवरदा सब जगत सबाया तू आपे ताड़ी लाइन आपे गुणगाया हर त्यावो भगतो दिन सरात अंत ले छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला दीजा दूजे भाए बिलावल न होई मन मुख दाय न पाए पाखंड भगत न होई पार ब्रह्म न पाया जाए मन हट कर्म कमावने थाए न कोई पाई नानक गुरमुखा बिचारिय विचों आप गवाई आपी आप पार ब्रह्म पार ब्रह्म वसिया मन आई जमण मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाई महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक स्यों लिव लाए जन्म मरण दो कटिए सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चले सतगुरु भाई सत संगति वैभाव कर सदा हर के

गवाई। गुण रवह गुण संग्रह ज्योति जोत में लाए, इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है जित लाए। नानक जिनको नजर करे हर चसा, से नाम रहे लिव लाए। महला तीजा सतगुरु की सेवना की तिया शब्द न लगो भाव। होम रोक मामनात धीर गो सुव, मन हट कर्म कमावणे फिर जोनी पाए। गुरमुख जन्म सबल है जिसनू आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पलै पाए पौड़ी। सब वडियाई हर नाम विच हर गुरमुख दियाई है, जे वस्त मंगिए साई पाई है जे नाम जित लाइए। गोहज गल जी की चै सतगुर पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाइए। जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाइए, श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे हर पर मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सबल है जे को इच्छे तिहा फल पाए, गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भोगवाए। हर सपी संतोख हुआ सच वस्या मन आए, सच दिहाय अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए। सचो दैदिस पसरिया गुर कैसै सुभाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छपै न किसै दे छपाई। महला दीजा गुर सेवा ते हर पाई है, जागो नजर करे मानस ते देवते पए सची भगत जिस दे। हो मैं मारन मिलायन गुर कै शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे ना वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वड्याई, हर करतै आ वधाई। सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उन्ह अंदर हिरदै भाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख न सकन उन्हां पराया, भला न सुखाई क्या होवै किस ही की झक मारी। जा सच्चे स्यों बण आई जे गल करते भावै, सा नित न चढ़ै सवाई सब झक झक मरै लुकाई। श्लोक महला तीजा त्रेगे आसा दूजे भाव की जो माया, जो मोहे माया जित लाए। हर सुख पलर त्या गया नाम विसार दुखवाए, मनमुख अज्ञानी अंदले जन्म रे मरिया वह जाए। कार्ज सिद्ध न हो नी अंत गया पछताई, जिस कर्म होवे ते सतगुर मिले सो हर हर नाम दे आई।

रावण सेती सरबर होई, घर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना, दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजत देहरा, मुसलमान मसीत। नामे सोई सेविया जह देहरा नाम मसीत। राग गुंड बाणी रविदास जीओ की, कर दूजा एको अंकार। सतगुर प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन हुए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवित मुकंदे मृत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। राहाओ मुकंद मुकंद हमारे।

आए जीवन साजे माई, एक चले हम देख स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जे तू देवै अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्व ज्योत तेरी पसर रही, जहां जह देखा तै नर हरी। जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही, तिनकी सार करने साहिब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्व रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तह रहा समाए। अंतर संसा बाहर माया, नैनी लाग सबाणी, प्रणवत नानक दसन दसा, परताप हैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लहा, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहा। किन बिज सागर तरिय, जीव त्यान नह मरिय रहाओ, दुख दरवाजा रुख रखवाला, आसा देसा दुए पट जड़े, माया जाल खाई खाई, पानी कर रख बदया, सत के आसन पुरख।

से साध के अर जो की जंगम पीर पुरुष बहु तेरे ते मिल तिला ते जेतन मिला त कीर्ति आखा तन मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे जो पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे राम कलिमा हल्ला पहला सुनमा छिंद्रा नानक बोला पासगत पंच कर नह डोला ऐसी जुगत जो को पाला आप तरह सगले कुल तारे सो अतूत ऐसी मत आवै एन सुन समाध समाव राहाव भिख्या पाए भगत पै चला होवे सो त्रिप संतोख अमुला ध्यान रूप हो आसन पावा साच नाम ताड़ी चित लावा नानक बोला अमृत बाणी सुन मा छिंद्रा औ तू निसानी आसा महन रस बलाए देह चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संत मिलाए दिख्या दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कलिमा हल्ला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाई सन्मुख सिद्ध भेटन को आए ने चो देव ड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हाँ तुझ को बले हर रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जनी त्याया परसद पैर सिज ते स्वामी अखर जिनको आया जाप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक पेट्यो साचा शब्द नबेरा राम कलिमा हल्ला पहला सुरती सुरतर लाइय एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहित सतु रख अहनस दीवा बल अथक ऐसा दीवा नीरत राय जित दीवा सब सोजी पाए रहाव अच्छी मिट्टी सोजी होए ताका किया मान सोए करनी ते कर कचो टाल ऐथे उथे निभ नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख बिरला बूझे कोए तेत कट दीवा ने चल होए पानी पर मर ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीत राय डोले वाव ना बड़ा होए जापै ज्यो सिंह आसन लोए खत्री ब्राह्मण सूद के वैस किरतना पाइय गणिस हंस ऐसा दीवा नीरत राय

पैर रखाए, गुरमुख वैत नाम दृढ़ाए, कलयुग धर्म कला एक रहाए। एक पैर चले माया मोह वधाए, माया मोह आत गुबार, सतगुर पेट नाम उधार। इस सब युग में साचा एक सोई, सब में सच दूजा नहीं कोई, साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाना कोई। सब युग में नाम उत्तम शब्द उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझ कोई, हर नाम त्याए भगत जन सोई। नानक जुग जुग नाम बड़ियाई होई, राम कली महला चौथा घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जे वड पग हो वड पागी, ता हर हर नाम त्यावै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै। गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय परगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी। रहाओ हीरा रतन जवेहर मानक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड पाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड़ कड़ लिया। रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर कड़ तली दिखलाया, पागहीन मनमुख ने लिया, त्रिन ओल लाख छिपाया। मस्तक भाग होवै तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावा, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल, सत्संगत मेल बुद्ध पाए। ए राम जान गुरमत राम बोलाए, जो जो सुन कहे सुमुखता, राम जपत सोहाए। हे राहाओ जे वड भाग हुआ मुख मस्तक, हर राम जना पेठाए, दर्शन संत देहु कर कृपा, सब दाल द दुख ले जाए। हर के रोक राम जन लीके, पाग ही ना सुखाए, जो जो राम कहा जन उचे, नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक, जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पहाए। दया दया कर राखो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए। हम बारग तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला जब था, हर के सखा साध जननी के, तिन ऊपर हाथ बतावै। दया दया करो राखो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए। हम बारग तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जननी के, तिन ऊपर हाथ बतावै। गुरमुख साध सही प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावै। राम को हर जन मेल मन पावै, अम्यो अम्यो हर रस मीठा, मिल संत जना मुख पावै। राहाओ हर के लोग राम जन उत्तम, हा मिल उत्तम पदवी पावै। हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावै। सेवक जन सेवा सेवट पागी, रिद मन तन प्रीत लगावै। बिन प्रीति करै बहु बातां, कूड़ बोल कूड़ो फल पावै। तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगीले पावै। हों काटो काट बाढ़ सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवै। राम कली महला चौथा, जे वड पाग होवै वड बेरे, जन मिलदा ठेलन लाइयै। हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तेत ना भाइयै। राम मोह को हर जन कर लाइयै, हों पानी पखा पीसो हो संत अग, पग मलमा तुर मुख लाइयै। राहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे, सो सतगुर मेल मिलाइए। सतगुर जेवड अवर ना कोई, मिल सतगुर पुरख तिहाइयै। सतगुर शरण परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइए। एक अपने स्वाए आए बाहां गुर अग, जो बगल समाध लगाइए। बगला काग नीच की संगत, जाहे करंग भिखू मुख लाइए। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए। राम कली महला चौथा, सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगे गुर चरणी, जिन हर प्रमार्ग पंथ दिखाया।

स्वामी हृद अंतर अलख लख वसायाम। मैं अवरना कोई सूझे बूझे मन हर जप जप जपाया, नाम ही ने फिरे सिनकटे तन कस कस नक वढाया। मोको जग जीवन जीवाल स्वामी हृद अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया। राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उरत हरे जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे। रहाव कोट कोट तेतीस जावा ताका अंत न पावह पारे, हृदय काम कामणी मांगा हृदय मांगा हाथ वसारे। राम हर जस जाप जब वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो रतारे जे वड भाग होवे ता जपिए। हर पौजल पार उतारे हर जन निकट हर जान निकट हर जन है, हर रख कंठ जन तारे। नानक पिता माता हर प्रभ हम बारक हर पत पारे। हे राग राम कली महला पंजवा, कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी कक तो पै स्वामी मानस की गते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छा सोई फल पावहो फिर दुख न व्यापै कोई। रहाओ काचे भांडे साजन बाजे अंतर ज्योत समाई, जैसा लिखित लिखिया तुर करता हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप कियो सब अपना एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतन आवा मोह अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाना हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण।

आपस ते ऊपर सब जानो, तो दरगे सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कोह न कोई, सतगुर मिलो नव निद पावो। इन वे तत् बिलोई, परम चुगावो गुरमुख लेव लावहो। आत्म चीनो पहाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस्यो करो बुराई। सतगुर मिले मार्ग मुक्ता, सेजे मिले स्वामी, तन तन से जन जिनी कल मैं हर पाया। जन नानक सद कुरबानी, राम कली महला पंजवा। आवत हरख न जावत दुखा, न जापे मन रोगनी, सदा आनंद गुर पूरा पाया। तो उतरी सगल बेयोग।

गगन चंदोवा, पवन में चोला करते अकेला, जलते उपत हुआ, पंच तत्कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, दंद कर चांद सूरज दोए जरे चरागा, चौंकुट पीतर राखे, दस पंथो पंच संगीता, एक है पीतर साथे, पिन पिन हुए भाव दिखावा, सब नरारी पख, कर कर नृत्य होवै दिन राति, कट कट वाजे तूरा, एक नचावे एक।

अहम रहाव निर्मल ज्योत अमृत नाम पीवत अमर पहने काम तन मन शीतल अग्निवारी अनद्रूप प्रगटे संसारी ही क्या देव जा सबके तेरा साध बलहार जाऊं लख बेरा तन मन जीव पिट दे सजे गुर कृपा ते नीच ने बजे आ कोल दिख के बारा बैल बुलाया जैसा सा तैसा दिख लाया कहो नानक सा पड़दा टूटा हों तेरा तू मैं मन बूठा राम कली महला पंजवा सेवक लाए अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देवा सगली चिंता अपने वारी तिस गुर को हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनह तूरे सतगुर रहाओ महिमा जाके गैर गंभीर होए निहाल दे जिस धीर जाके बंधन काटे राय सो नर भरना जोनी पाए जाके अंतर प्रगट आप ताको नाही दुख संताप लाल रतन तिस पल परिया कै सगल कुटांब जन लै तरिया ना किसी परमना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जात का देखो आप दयाल कहो नानक प्रभ मिले रसाल राम कली महला पंजवा तंते छुटकी अपनी धारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी जो किश करै सो मन मेरे मीठा तां एह अचरज ननो डीठा अब जानी रे मिर्गी बिलाए बुझ गई तिसन निवारी ममता गुरपुरा लियो समझाए हे राहो कर कृपा राखो गुर शरणा गुर पकराए हर के चरना बीस विश्व जा मन ठहराने हे गुर पारबम एक ही जाने जो जो किनो हम तिदके दास प्रभ मेरे को सगल निवास ना को दूत नहीं बेराय गल मिल चाल एक पाई जाको गुर हर दिए सूखा ताको बोरन लग दुखा आपे आप सर्ब प्रतपाल नानक रतो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुक्ते पड़ता टीका सहित हृदय राम नहीं पूरन रहत गुर उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे अपना कह अपना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित रहा आगे रखो साल ग्राम मन किनो दास दिस विश्राम तिलक चरावे पाई पाए लोक बचारा अंध कमाए खाट कर्मा अर आसन धोती पागठ ग्रह पड़ा नित पोती माला फेरे मंगे विभूत ए बिद कोई न तर बीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रै गुण की सुत्री माए चतुर भेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट बिघन ने आवन देर अणक माया है ताकि चेर अणक पाव ताके पानी हार जाको मया पई करतार जिस सहाई हुए भगवान अणक जतन वा कै सरंजम रहो करता राख गीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा ताँ की केतक वर्ण बल बल जाइए ताँ के चरण तिन ही किया जाप तप ध्यान अनक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कलम परवान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल दुए मिल पै प्रगास सुख सहज सुख आस निवास पूरे सतगुर दिया विश्वास नानक दस दास राम कली महला पंजवा दोस न दीजे काहू लोग जो कमावन सोई भोग आपन कर्म आप ही बंद आवन जावन माया तंथ ऐसी जानी संत जानी।

अम्बाह ऋद्धबद्ध सिद्ध स्वर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसा है। गुरमुख नाम निमख हृदय वसा हर के नाम की वड्याई। कीमत कह न जय रहाव सूर पीर तीरज मत पूरा सह समाध तुन गहर गंभीरा। सदा मुक्त ताके पूरे काम जाके हृदय वसा हर नाम। सगल सुख आनंद रोग साम दर्शी पूरन जोग। आय न जाए डोला कत नाही जाके नाम बसै मन माही। दीन दयाल गोपाल गोबिंद गुरमुख जपिय उतर चिंद। नानक कौ गुर दिय दान नाम संतन की टहल संत का काम। राम कली महला पंजवा बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ। आज्ञा मिले नावे थाओ गुर पूरे की चरनी लाग। जन्म जन्म का सोया जाग हर हर जाप जप ला। गुर कृपा दे हृदय वस पौचल पार परला रहाओ। नाम दान त्याय मन अटल ता छूट माया के पटल। गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हुए निर्मल जियो। सुध सुध सुध विचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा। सो हर भजन साधक संग मन तन रप हर कै रंग। छोड़ सियानप ब चतुराई मान बिन हर नाव जय नकाई। दया तारी गोविंद गोसाई हर हर नानक टेक टिकाई। राम कली महला पंजवा संत का संग राम रंग खेल। आगे जम सोहे न मेल अहंग बुद्ध का पया विनाश। दुर्मत हुई सगली नास राम नाम गुण गाए पंडित। कर्म कांड अहंकार न काज कुशल सेती का जाहे पंडित। रहाव हर का जस निध लिया लाभ पूर्ण पय मनोसाभ। दुख नाठा सो कर मैं आया संत प्रसाद कमल बिगसाया। नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निधान। संतोख आया मन पूरा पाए फिर मांगन कहे जाए। हर की कथा सुनत पवित जिहवा भगत पाई गत मत। सो प्रवान जिस दसाई नानक तेजन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा गौकर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई। तब ओ चरनी आए पई सुन संतो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत निकाई गुर पूरा पेटत उधार। रहाव जब कुसको कोई लेता मां देवे मान तब आपस ऊपर रख गुमान। ता जब उसको कोई मन पर हर तब ओ सेवक सेवा करे। मुख भिरावे अंत ठगावे एकत ठौर ओ कहीं ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग रच सो कछु न लहा। इसे त्याग सत संगत कर बटभागी नानक ओह तर। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्वमय पेक पूर्ण पूर रहा प्रभेक। रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्तु आप पछाण। पी अमृत संतन प्रसाद वड्डे पग होवे तो पाइये बिन जीवा के जाना स्वाद। रहाओ आठ दस वेद सुने कै डोरा कोट पर गास न दिस अंधेरा। पशु प्रीत का संग रच जिस नहीं बुझावा सो केत विद बुझ। जानन हर रहा प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गाव नानक तिन जम नेड़ ना आव। राम कली महला पंजवा दीनो नाम की उपवित। हर तन रासन रासे बित काटी बंद हर सेवा लाए। हर हर भगत राम गुण गाए बाजे अनहद बाजा। रसक रस गुण गावे हरजन अपने गुरदेव निवाज। रहाव आहे बने पुरबला पाग जन्म जन्म का सोया जाग। गई गिलान साध कर संग मन तन रा

का ढुल लिया। सुन सुन उपजो मन में चाओ, आठ बैर हर की गुण गाओ, गावत गावत परम गत पाई। ई गुर प्रसाद नानक लिव लाई, राम कली महला पंजवा, कौडी बदले त्यागे रतन, छोड़ जाहे ताहू का जतन। सो संचय जो होची बात, माया मोहया टेड हो जात। आपागे तैं लाज नाही, सुख सागर पूरन परमेश्वर। हर ना चेत्य मन माही रहाओ, अमृत कौरा बिख्या मीठी। साकत की बिद नैनो डीठी, कूड़ कपट अहंकार रिझाना। नाम सुनत जन बिछु डिसाना, माया कारण सद ही चूरा। मन मुख कवि न उस्तत करा, निरपौ निरंकार दा तार। तिस्यो प्रीत न कर गवार, सब साहा सिर साचा साह। बेमह ताज पूरा पातशाह, मोह मगल लपट्यो प्रम गिरहा। नानक तरिय तेरी मेहर, राम कली महला पंजवा। रैन दिन जपो हर नाव, आगे दरगह पावो थाओ। सदा आनंद ना होवी सोग, कबो न व्यापै होमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पै बिस्मदा। परम गद पावै हर सिमर परानी रहाओ। ज्ञान मन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै न तार। सगल पावना चल संग, पवजल तरिये प्रभ कै रंग। देही तो इना उतरह मैल, होमै व्यापै दुबदा फैल। हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए। कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कबू न बिसर गोपाल।

चरण कमल हर शरण मन तन हर उहि ध्याया, आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओट सदीव, मा जाके कीने है जीव। सिमरत हर करत निदान, रखन हर निदान। सर्व की रेण हो बीज, आप मिटाय मलीज। अणदिन त्याय नाम, सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा, कारण करन करीम। सरपत पाल रहीम, अल्लाह लाखे पार। खुद खुदाए वड बेशुमार, ओ नमो भगवंत गोसाई। खालक रब रहया सब ठाई रहाओ, जगनाथ जग जीवन माधो। पव पंजन रिद माहे रदो, रिखी केस गोपाल गोबिंद। पूरन सर्वत्र मुकंद, मेहरबान मौला तू ही एक। पीर पै कांबर सेख, दिलां का मालिक करे हाक। कुरान कतेब ते पाक, नारायण नर हर दयाल। रमत राम घटघट आधार, वासदेव वत्सव ठाए। लीला केश लखी ना जाए, मेहर दया कर करना हार। भगत बंदगी देहे सृजनहार, कहो नानक गुर खोए परमा। एको अल्लाह पार ब्रह्म, राम कली महला पंजवा। कोट जन्म के बिनसे पाप, हर हर जपत नाही संताप। हर के चरण कमल मन बसे, महा विकार तन ते सब नसे। गोपाल को जस गाओ प्राणी, अकथ कथा साची प्रभ पूरन। ज्योति ज्योत समाणी रहाव, तृष्णा भूख सब नसी। संत प्रसाद जपया अविनसी, रहन दिनस प्रभ सेवक मानी। हर मिलने की

0: ईश्वर सकल निवास काट काट रब रहया गुण तास दर्श दे तारो प्रभु आस नित नानक चितवा सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईआ आवा गौण मिटे मेरे मेरे बीत
1: रहाओ गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल में होए निवास। साध संग में हो आधार नानक भव जल उतरस पार राम कली महला पांजमा गौर मेरा पूरा गौर पूरा मेरा गौर पूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल विनाशे रोग कूरा रहाओ। एक रादो साचा सोई जाकी शरण सदा सुख होई नींद सुहेली राम की लागी भूख हर सिमरत बैनसे सब दुख सहज आनंद करो मेरे भाई गुरपूरे सब चिंत मिटाई आठ पहर प्रभु का जप जाप नानक राखा हुआ आप राम कली राग राम कली महला पांजमा पड़ताल घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नर नहरो नमस्कारन जलन थरन बसन बसद गगन एक ओंकारन रहाओ। हरन तारन पुन पुन है कारण ना गिर है नहरन हारन गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारन करन केल गुण अमोल नानक बलहारन राम कली महला पांजमा। रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया छले कन कामनी रहाओ। भंडार दर्ब अरब खरब पेख लीना मन सधारे ना संग गामनी सुत कलत्र भाई प्रात मीत और ज परयो पर मोह ए बिरख शामनी चरण कमल सरन नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौमा। तिपते रे मन ओट लेहो हर नामा जाके सिमरन दुरमत नासे पावे पद निर्वाना रहाओ। बड़पागी तै जन को जानो जो हर के गुण गावे जन्म जन्म के पाप खोए के फोना बेकांट सिदावे अजामल को अंत काल में नारायण शुद्ध आई जहाँ गत को योगी सर्वाशत सोगत शन में पाई नाहन गुण नाहन कुछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो अबे दान ए दीना राम कली महला नौमा। साधो कौन जोग तब कीजे जानते दुर्मत सगल विनाशे राम भक्त मन पीजे रहो। मन माया में और जो रहो है बूझे ना कुछ ज्ञाना कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाना पै दयाल कृपाल संत जन तब ए बात बताई सर्व धर्म मानो तह किए जे प्रभ कीर्त गाई राम नाम नर निसबासर में निमख एक और तारे जम को त्रास मिटे नानक तह अपनो जन्म सवारे राम कली महला नौमा। पुराणी नारायण शुद्ध लेहे शन शन औद कटे नैस बासर बिरथा जात है दे रहाओ। तरना प्यो बेख्यन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद प्यो अजहू नहीं समझे बिरद प्यो अजहू नहीं समझे कौन कुमत और जाना मानस जन्म दियो जय ठाकर सो तैं क्यों बिसार्यो

मुक्त होत नर जाके सिमरे निमख ना ता को गायो। माया को मद कहाँ करत है संग न काहू जाई, नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई। रामकली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन तपत रहे, सा धरती सो पौन चुलारे जोग जी खेले ता थाब कैसे। जीवन तलब निवार होवे पुराना करे ध्याना कल लखन विचार रहाओ। किते देश ना आए ऐ सुनिया तीर्थ पास ना बैठा, दाता दान करे तै ना ही महल ओसार ना बैठा। जे को सत करे सो शीजे तप कर तप ना होई, जे को नाम लवे बदनामी कल के लखन एही। जै सिकदारी तिसे खुआरी चाकर केहे डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी ना चाकर हथों मरना। आह गुणा कल कल आइए तह जो केरा करह वापस ते गुण दे ते पाजे रहाओ। कल कल वाली सरा नवेड़ी काजी कृष्णा हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद अर्थ बन करणी कीमत लहया। पत बैन पूजा सत बैन संजम जत बैन काहे जनेऊ, नावो धोवो तिलक चढ़ावो सच बैना साच ना होई। कल प्रवान कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाओ पया नहमान कर करता तू एको जान। नानक नाम मिले बड़ियाई इंदु उपर कर्म नहीं, जे कर होंदे मंगन जाइए फिर ओलामा मिले तही। रामकली महला पहला। जग प्रबोधो मड़ी बिदावे है आसन त्याग काहे सच पावे, ममता मोह कामन हितकारी ना उतूती ना संसारी। जोगी बैस रहे दुविधा दुख भागे, कर कर मांगत लाज ना लागे रहाओ। गावे चीतना चीने आप क्यों लागी निबरे प्रताप, गुर के शब्द रचे मन पाए बिख्या सहज बिचारी खाए। भस्म चढ़ाए करे पखंड, भस्म चढ़ाए करे पखंड माया मोह सहे जम डंड। फूटे खापर पीख ना पाए बंधन बांध्या आवे जाए, बिंद ना राखे जति कहावे माया मांगत तै नो लोभ आवे है। निर्दया नहीं जोत उजाला बूझत बूढ़े सर्ब जंजाला, पेख करे खेंथा बहुत थटुआ झूठो खेल खेले बहुत नटुआ। अंतर अगन चिंता बहु जारे, बिन कर्मा कैसे उतरस पारे। मुंद्रा कटक बनाई कान मुक्त नहीं बिख्या बिख्यान, जेहवा इंद्री साध लुहाना पशु पै नहीं मिटे निशाना। त्रैबत लोगा त्रैबत जोगा शब्द विचारे चूकस सोगा, ऊजल साध सो शब्द होए जोगी जोगत विचारे सोए। तुझ पह नौ नैतू करने जोग था पोता पे करे सो होग। जत सत संजम सच सचीत नानक जोगी त्रैबण मीत। रामकली महला पहला। खटमट देही मन बैरागी सुरत शब्द तुन अंतर जागी, वाजे अनहत मेरा मन लीना गुरबचनी सत नाम पतीना। प्राणी राम भगत सुख पाइये गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइये रहाओ। माया मोह बिबराज समाए सतगुर पेटे।

प्रसाद राग माला राग एक संग पंज ब्रंगन संग लापे अठो नंदन प्रथुरा पैरो वै कर ही पंज राग नि संग उचारई प्रथम भैर वे बेलावली पुनिया के गा वै बंगले पुन ले के पे बारी है पैरों की पांचों मारी पंच मर्द सासना वै बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पातरे दुधिया मालक उसके लापे संग रागनी पांचों था पै गौंड करी और देव गंधारी गंधारी सिंहती उचारी तनाश्री है पांचों गाई मारा कौ सक संग लाई मारो मतंग में वारा पर बचन कौसके उभारा खोहड़ो पौर नद गाये अष्टमाल कौ सक संग लाए पुनायो हंडोल पंज नार संग सोत उठे तानक लोयल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आवी बसंती संदूर सहाय सरसी लै पार जा संग लाई पांचों आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्रन बेमंगलन सहाय सरस मानो आए बनोदा गावे सर बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशेली बट मंजरी तोड़ी कही अलाप कामोदी यो गुजरी संग दीपक के था कालंका कुंतले ओ रामा कमल को चंपक के नामा गौराओ कला कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सामे सिरा वै गावे पांचों संग बरंगण लावे बैरारी करना टी तरी गौरी गावे आसा वरी ते पास सिन्वी अलापी श्री राग से पांचों थापी सालू सारग सागरा और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कौम अमीर खस मेघ रावे गावे पांचों संग बरंगण लावे सोड गुण मलारे तो नहीं पुन गावे आसा गुन गुनी ऊंचे सुरसो पुन कीनी मेघ राग से पांचों चीनी बैरा दर गई दर के दारा जवली तर नड़ो जल तारा पुन गावे संग करो श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के